0: हमारे प्रसाद को सिगरेट कहता है मूर्ख, सूटा मार।
1: सेठ जी सूटा मारिए, जल्दी सूटा मारिए। घोर चमत्कार भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दिल की बात समझ गए होंगे।
2: समझ गए बच्चा, जो तुम दिखाई दे रहे हो वो तुम नहीं हो,
0: और जो तुम हो पुत्र उसे सिर्फ हमारे ज्ञान चक्षु देख रहे हैं।
1: मैं आपका दास हो गया, आपने दिखला दिया कि आप कितने महान हैं।
2: पर बच्चा, जो तुम समझ रहे हो वो हम भी नहीं हैं।
1: मूर्ख जो ठहरा भगवान, कैसे समझूंगा।
0: पर हम तुम्हें वचन देते हैं पुत्र, कि जाने से पहले हम तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोल देंगे।
1: क्या खोल देंगे?
3: ज्ञान चक्षु।